सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948, आश्विन महीने की तिथि 4, अंग्रेजी सन 2026 और नवंबर महीने की 26वीं तिथि है। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस समय प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हुए हम आरंभ करने जा रहे हैं आज की पहली सभा।

0: श्रोताओं, कुछ क्षण में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुने हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत करते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रमों की शुभारंभ हम करेंगे भक्ति गीतों के साथ, जो आप सुन पाएंगे 6:10 से। 6:30 पर सुनिए महिलाओं से केंद्रित कुछ फिल्मी गीत। 7 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। 7:05 पर होगा पोएम ऑफ द डे और आज का दिन। 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम बीट्स ऑफ हार्ट्स।

8 बजे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे। 8:15 पर होगा देशभक्ति गीत का कार्यक्रम। 8:30 पर आप सुन पाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। 8:40 पर होगा कार्यक्रम सुरों की रंगोली। 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंसोलिक बातोरी रिले किए जाएंगे।

9:15 से 10 बजे तक आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले आप सुन पाएंगे खेलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत करेंगे कुछ लोक संगीत। कलाकार है चोयसेली नेइबोंग और चुंगसाम थांग नेइबोंग। 9:25 पर सुनिए रांखल कार्यक्रम में। रांखल कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत करेंगे कुछ भक्ति गीत जोहना फांगचुंग और बैंकंग और उनके साथियों के आवाज़ों में। एंजेलिन सुईचांग और साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत आप सुन पाएंगे आज के जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत। समय रहेगा 9:35 और ब्याते कार्यक्रम में आज सुनिएगा कुछ आधुनिक गीत लालफानी डारने और उनके साथियों के आवाज़ों में 9:45 पर। 10 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

हिंदी में समाचार एक घंटे के अंतराल अंतराल पर आप सुन पाएंगे, जैसे कि 12 बजे, पुनः 1 बजे, फिर 2 बजे मिडडे न्यूज़, अंग्रेजी में 2:15 पर, हिंदी में दोपहर समाचार पुनः 4 बजे जो आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 12:05 पर, 1:05 पर, 2:30 पर और पुनः 4:05 से। तो श्रोताओं, ये थे आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, 6:10 हो चुके हैं। आरंभ करते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए श्री शनि महाराज जी के कुछ भजन।

श्रोता, अभी आपने सुने श्री शनि भजन और इसके साथ ही आज का भक्ति गीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत करते हैं महिलाओं से केंद्रित कुछ फिल्मी गीत।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
0: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

श्रोताओं, अभी आपने सुने महिलाओं से केंद्रित कुछ फिल्मी गीत, और इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब सुनिए हिंदी में समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रेप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटिगा और बरबुंडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम
2: 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में

आज का दिन भी हम जानकारियाँ पेश करते हैं। आज का दिन यानी कि आज जिस तारीख है, इस तारीख के विशेषताओं के बारे में।

आज 26 सितंबर का दिन विश्व और भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रसिद्ध शख्सियतों की जन्म और निधन के लिए जाना जाता है। आज का दिन यानी कि 26 सितंबर को वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे और इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया जाता है। इन दिवसों पर हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज के दिन में घटित कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। तो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं सन 1580 से। 1580 के आज के दिन फ्रांसिस ड्रेक ने अपनी नाव से पृथ्वी का चक्कर पूरा किया था। सन 1629 के आज के दिन स्वीडन और पोलैंड ने अल्टमार्क की शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सन 1905 के आज के दिन अल्बर्ट ने अपने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया था। सन 1919 के आज के दिन रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के पहली बैठक कलकत्ता में हुई थी।

सन 1950 के आज के दिन इंडोनेशिया ने यूएन की सदस्यता ग्रहण की। सन 1984 के आज के दिन यूके ने हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ। सन 1998 के आज के दिन सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अपना 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2004 के आज के दिन अमेरिका ने असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत को तकनीक देने का निर्णय किया। सन 2009 के आज के दिन पूजा श्री वेंकटेश ने रश्मि चक्रवर्ती को हराकर ITF यानी कि वुमेन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता और पंकज आडवाणी 76 नेशनल विलियर्स और स्नोकर चैंपियनशिप में विलियर्स चैंपियन बने। 2011 के आज के दिन दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया है। यूएन ने अपने विज्ञप्ति में कहा है कि इस परिवहन प्रणाली ने शहर का प्रदूषण स्तर एक

6,30,000 टन कम किया है। तो श्रोताओं, ये थी 26 सितंबर के दिन घटे कुछ विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी।

अब बांटते हैं जानकारी। आज ही के दिन यानी कि 26 सितंबर का जन्म है विशिष्ट व्यक्तियों में से प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। सन 1820 के आज के दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप हैं महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी, उनका जन्म हुआ था। सन 1888 के आज के दिन बी एस एलियट, आप हैं अंग्रेजी लेखक और कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनका जन्म हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सुबेदार जगिंदर सिंह का जन्म सन 1921 के आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता देव आनंद का जन्म सन 1923 के आज के दिन हुआ था। सन 1932 के आज के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री, उनका जन्म हुआ था। अब जानकारी आज के दिन निधन हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में से प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। सन 1977 के आज के दिन उदय शंकर, आप हैं प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर, उनका निधन हुआ था। हेमंत कुमार, आप हैं हिंदी और बंगाली के जाने माने पार्श्व गायक और संगीतकार, उनका निधन 1989 के आज के दिन हुआ था।

अब जानकारी बांटते हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के बारे में। हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे यानी विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य और महत्व ये है कि गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीकों के बारे में युवाओं और नव दंपतियों को सही जानकारी देना।

0: अब थोड़ी सी और जानकारी इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके उन्मूलन का बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया जाता है। इसे वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। यह दिवस 26 सितंबर 2014 को पहली बार मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि परमाणु हथियारों से मानवता को होने वाले खतरों के प्रति जन जागरूकता फैलाना और दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देना। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम आज के दिन। इसके अंतर्गत आज हमने बांटी जानकारी 26 सितंबर के दिन की घटी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज के दिन जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु के बारे में और आज के दिन मनाए जाने वाले कुछ विशेष दिवस के बारे में। और अब श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुने कुछ फिल्मी गीत।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने

0: لیے اٹھائیے اپنا موبائل فون, ٹائپ کیجئے گانے کے بول, فلم کا نام, ساتھ ہی اپنا اور اپنے دوستوں کا نام, اور میسج کو بھیج دیں اس نمبر پر 9435700596. اپنا پتہ ضرور لکھیں, ہمیں آپ کے ریکویسٹ کا رہے گا بے صبری سے انتظار.
1: श्रोताओं, अब पेश करते हैं कार्यक्रम बीट्स ऑफ हार्ट्स. श्रोता, हम जिंदा है और जिंदा तब तक है जब हमारे दिल में धड़कनें होती हैं, और हमारी यह धड़कन हमें क्या बोलती है, किस तरह से वो स्वस्थ रह सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत. और साथ ही बीच बीच में हम सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत भी. धड़कनें तो सबके पास है, पर एहसास सबके पास नहीं. पहनाव से नहीं, सोच से इंसान बड़े होते हैं. श्रोता, क्या हम सिर्फ स्वयं के बारे में, यानी कि अपने के बारे में सोचकर खुश रह सकते हैं, या हम दूसरों के लिए भी सोचकर खुशी महसूस कर सकते हैं? क्या सही है हमारे लिए सिर्फ अपने के बारे में सोचना या सभी के बारे में सोचना? हमारे धड़कन स्वस्थ तब तक रह सकते हैं शारीरिक तौर पर जब हम अच्छे खान पान अपने जीवन शैली का अपनाते हैं, और मानसिक यानी कि कुछ फीलिंग्स यानी कि इमोशंस के तौर पर स्वस्थ तब तक रहते हैं जब तक हम खुद के साथ साथ हमारे चारों ओर के लोगों को लिए भी हम सोचते हैं. तो अपने को जो दिल है और दिल में जो बिट्स है, इसके बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुन लेते हैं ये गीत.

श्रोताओं, किस तरह से हम दूसरे के बारे में सोचकर, दूसरे को थोड़ी सी खुशी देकर खुद खुश रह सकते हैं और दूसरे को भी खुशी दे सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उनका काम था पुराने जूते सिलना, पर उनकी एक आदत अलग थी। वह हर आने वाले ग्राहक को दिल का उनका हाल चाल पूछते थे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमेशा बातें करते थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा जिनका उम्र 10 साल था, वो लड़का आया और भागते हुए आया। गुस्से में था, उसका जूता टूटा हुआ था। मुची ने उनको पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़के ने बोला, सबके पास नए जूते हैं, मेरे पास टूटे हुए, मेरी किस्मत ही खराब है। तब वो वृद्ध मुची ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा धड़कने तो सबके पास होते हैं, पर एहसास सबके पास नहीं होते हैं। आपके पास ये पुराने जूते हैं, ये टूट जाएंगे, लेकिन आपका दिल, आपका सोच बड़ा होना चाहिए। फिर वो वृद्ध मुची ने उस लड़के का जूता मुफ्त में ही सिल दिया और अंदर से एक छोटा सा दिल का शेप का कागज उस जूते में रख दिया। उस पर लिखा था, तू खास है। लड़का चला गया। इसके बाद साल महीनों बीत गए। बहुत साल बाद, करीब 15-16 साल के बाद, एक बड़ी गाड़ी वो वृद्ध मुची के दुकान के सामने रुकी। वही लड़का अब एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उसने आकर मुची के पैर छुए। मुची पहचान नहीं पाया। तब डॉक्टर ने बोला, मुझे पहचाना? आपने मेरे टूटे जूते नहीं, मेरा टूटा हुआ हौसला सिला था। उस दिन आपने जो दिल वाला कागज दिया था, उसने मुझे सिखाया कि दिल से काम करो। ये सुनकर मुची के आंख में आंसू आ गए। तो श्रोताओं, इस जो छोटी सी एक स्टोरी है, इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे कुछ छोटी सी बातें, कुछ छोटे छोटे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो छोटे छोटे काम हैं, ये कभी कभी दूसरे के ज़िंदगी में बाहर ले सकते हैं और बाहर लेकर भी आते हैं और उनको बड़ा इंसान, एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाने में मदद करता है।

श्रोताओं, किसी को दिल जीतना है तो दौलत से नहीं, मोहब्बत के दो लफ्ज़ से जीता जाता है। दिल तो हर सीने में धड़कते हैं, पर जिंदा वही है जो दूसरों के लिए धड़कते हैं।

0: श्रोताओं, रिश्ता तो दिल में पनपते हैं। जहाँ मोहब्बत हो, प्यार हो, धन दौलत तो बाहरी चीज़ें हैं जो आते जाते रहेंगे, पर अपनापन हमेशा दिल को दिल से जुड़े रहते हैं। तो श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनिए आकाशवाणी हाफलोंग। तो इसके साथ ही बिरसा फारसी ये कार्यक्रम समाप्त होता है और अब सुनिए समाचार प्रभात जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर

0: उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के नौवे दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री

0: सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
5: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
6: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: श्रोताओ, अभी आपने सुने हिंदी में समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे। अब पेश करते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इस देशभक्ति गीत के साथ ही आज का देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम ही पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ रिले किए जाएंगे।

श्रोताओं, अभी आपने सुने सुरों की रंगोली। आज के कलाकार थे जुबिन गर्ग। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफ रंग केंद्र है। अब से कुछ ही क्षण में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंसुलिक बातोड़ी रिले किए जाएंगे।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुने पुआर आंचलिक बातरी, ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
0: श्रोता, अब प्रस्तुत करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले सुनिए खेलमा कार्यक्रम। खेलमा कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत करेंगे कुछ लोक संगीत। कलाकार है चोइसली नेइबम और उनके साथी चुआंगसाम थांग नेइबम।

Dios, chakalai,

Tăcăciu toi taroi tăt nun noi, tun tăcăciu toi taroi tăt.

ランは褒めてやがおいかかがてしょんしょんてが褒めてやがおいまろいしょん

0: Lui. Taita katsottiin hiekaisilla bolalla. Jatpojoit
1: श्रोताओ, अभी आपने सुने खेलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुने कुछ लोकगीत कलाकार थे चोइसिली नेइबोम और चुआंगसाम थांग नेइबोम। इसके साथ ही आज का खेलमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अब हम प्रस्तुत करते हैं रांगखल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए कुछ भक्ति गीत। कलाकार है जोना भांगचुंग भैंकेंग और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आपने सुने जोना वांगचुंग, वियंकांग और उनके साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत आज के रांगखोल कार्यक्रम में। इसके साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत करते हैं जयंतिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का कलाकार है एंजेलिन सुइचियान और उनके साथी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए कुछ भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जयंतिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के कलाकार थे एंजेलिन स्वीचंग और उनके साथी। इसके साथ ही आज का जयंतिया कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत करते हैं ब्याते कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए कुछ आधुनिक गीत। कलाकार है लालम फैनी डारने और उनके साथी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुनिए लालम फेनी डार्ने और उनके साथियों के गाए कुछ आधुनिक गीत आज के ब्याते कार्यक्रम में। इसके साथ ही ब्याते कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और यहीं पर समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की ये कड़ी। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को आप पुनः सुन पाएंगे हमारे दूसरी सभा में शाम के 6:05 से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी दो दीवाने शहर में।

समुंदर पर बारिश हो रही थी, पानी पर पानी की टपकन। श्रुति की देह पर गिरती मूसलाधार बारिश मांसपेशियों में ऐसी तरंग उठा रही थी कि उस राग उस लय को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या पानी को भी ऐसी थिरकन और सिहरन महसूस हो रही है? उसे इस पल शुभम की याद शिद्दत से आ रही थी। उसने वायदा किया था कि इस बार जब बारिश का मौसम आएगा तो वह दोनों उसी तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी उसके दिल पर छाई घटाबन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।

यादों में खोई श्रुति जब भीगती हुई अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहाँ निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा, मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा। उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है, मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना? शुभम ने फौरन कहा था, जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए। दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी, ऐसी छोटी मोटी

बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है। इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहाँ आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे। उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था, जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी बेसमेंट में था, जहां कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहां एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहां झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे। मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। एक दो दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी, बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ, शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं। तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है। और श्रुति कहते कहते अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रहे हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ। और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी, शुभम ने कहा। ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं। पता है यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते, है ना?

फोन रखने के बाद उसे याद आया कि साथ फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना,

हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है? बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा। इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति? हाँ वो तो ठीक है। तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या? श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति। ठीक है। श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है। उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं, बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी। माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी। सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वो जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी। उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी, जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़, देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं, जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा तो। एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल, तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता। रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो, रेखा हंसने लगी, जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो। अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो। अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं, हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा, इंसानी जीजी विशा। वही तो मैं कह रही हूँ, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा।

0: ये सच कुछ लोगों का हो सकता है, मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं।
1: तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों?
0: रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई।
2: उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में

रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ, और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बताए देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

0: शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूँ, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और कुछ नहीं। उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।
1: अब और नहीं होगा माँ,
0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई, तभी फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा, हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूँ, यहाँ 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी ना मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी।

0: और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
1: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति, दोनों फुहारों

में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भर कर नहा लो। दुबई में बारिश नहीं होती है। शुभम ने कहा और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

गीतों भरी कहानी में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका नासिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में। वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का। संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
3: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।

0: मैटिनी शो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय हमारे स्टूडियो में हैं उदय दहिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जाने माने कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत धन्यवाद यूनुस जी, और विविध भारती जो कि हमारे बचपन से हमने इसको सुना,
1: बिल्कुल,
2: और जब सुनते थे तो कभी सपने में सोचते थे कि क्या हमारी आवाज भी यहाँ पर सुनाई देगी,
1: और आज आ रही है
2: तो एक सपना साकार हो रहा है।
1: जब आपने बचपन का जिक्र किया तो चलिए फिर बचपन में चलते हैं
2: जी।
1: तो कहाँ आपका बचपन बीता था और कैसा था आपका बचपन?
2: बचपन बड़ा मजेदार था। कारण ये है कि पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
1: हाँ,
2: तो अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होते थे,
1: हाँ,
2: तो एक ही शहर नहीं, बहुत सारे शहर,
1: बहुत सारे शहरों वाला बचपन है
2: जी। जी,
1: जैसे
2: जैसे मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में,
1: बताओ।
2: फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया भोपाल,
1: तो भोपाल आ गए,
2: फिर भोपाल से ट्रांसफर हो गया रायसेन,
1: लो।
2: तो ऐसे शहर बदलते रहे, ऐसे 5-7 शहरों में बदल के फिर हम लोग, अब नर्मदापुरम हो गया, पहले नाम होता था होशंगाबाद
1: जी।
2: तो उसमें एक कस्बा है, तहसील प्लेस है पिपरिया,
1: हाँ,
2: वहां मेरा ज्यादा लॉन्ग टाइम बीता है।
1: अच्छा, पिपरिया यानी पचमढ़ी जाने के रास्ते वाली
2: जी, बिल्कुल, पचमढ़ी का मुख्य द्वार।
1: क्या बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुंदेलखंड से ताल्लुक है आपका।
2: हाँ जी, बिल्कुल है। क्योंकि बुंदेलखंड में मेरा ननिहाल है।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: कहाँ पर?
2: ये है सतना पन्ना।
1: हाँ, पन्ना तो टाइगर रिजर्व के लिए
2: टाइगर रिजर्व है, जहां पर हीरे और पन्ने निकलते हैं।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस की दुनिया कहाँ से शुरू होती है?
2: ये शुरू होती है 1987 में, जब हमारे एक ऐसे कलाकार जो गायक भी, एक्टर भी, कॉमेडियन भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी, तमाम खूबियां जिनके अंदर हैं,
1: किशोर कुमार जी।
2: तो उस समय वो नहीं रहे थे 1987 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लगातार उनकी फिल्में आती थी। और मैं उस समय कुछ 6वीं 7वीं पढ़ता था
1: जी।
2: तो उनको जब मैं देखता था तो मैं सोचता था यार ये कौन है, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा हम जानते
1: पता
2: नहीं थे,
1: नहीं होता,
2: बस इतना मालूम था कि कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब मैं उनको देखता, उनकी भाव भंगिमाएं जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, आप स्क्रीन पे उनको देखो तो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका हिलते ही रहता था, कभी एक भांग ऊपर जा रही है, मैं सोचता था कि क्या कर दे, ऐसा मैं भी कुछ करूंगा कि लोग हंसे और खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
1: वाह वाह वाह।
2: तो वहां से मैं प्रेरित हुआ और फिर मैंने एक विधा सीखी। वैसे मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में गायक बनूं।
1: अच्छा।
2: लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमको अलग से कोई तालीम दी जाए, सिखाया जाए, कहीं भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा एक ऐसी विधा जिसका कहीं कोई स्कूल नहीं होता, और वो है कॉमेडी।
1: बिल्कुल,
2: कॉमेडियन बनाने का कहीं कोई स्कूल नहीं होता।
1: सही है।
2: मतलब आपको एक्टिंग का स्कूल मिल जाएगा, सिंगिंग का मिल जाएगा, डांसिंग का मिल जाएगा, लेकिन कॉमेडी का स्कूल नहीं मिलता।
1: यस,
2: कॉमेडी खुद सीखी जाती है, ये एक लव की तरह सीखी जाती है।
1: बिल्कुल।
2: बहुत सारे द्रोण आपके सामने होते हैं, अलग अलग सीनियर कलाकार, किसी का बोलने का ढंग सीखते हैं हम, किसी से बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी से आवाज का थ्रो सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर ये सीखना शुरू किया, और फिर धीमे धीमे करके मैं मंचों पे आने लगा।
1: क्या बात है।
2: और मैं सबसे पहले मैंने मिमिक्री सीखी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला जो पायदान होता था वो मिमिक्री होता था, किसी की नकल कर लेना।
1: और जिन दिनों की आप बात करें उन दिनों तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
2: नहीं था, बिल्कुल।
1: और मिमिक्री बहुत होती थी, और मध्य प्रदेश में मिमिक्री के राजा कौन हुआ करते थे?
2: अरे, नायकर साहब।
1: जबलपुर के नायकर साहब।
2: जी, जी जी। तो बस ऐसे बड़े सीनियर कलाकारों को हम मंचों पे सुनते थे, उनको सुनकर सीखते थे कि कैसे बोलना है, और फिर हमने कुछ अपना भी सीखा, अपना कुछ बनाया। जैसे मैंने कुछ अलग तरह की मिमिक्री सीखी। उस समय टेलीविजन पर महाभारत सीरियल आता था, तो उनके कुछ कलाकारों की आवाज की कॉपी करने लगा।
1: यहाँ से शुरुआत हुई, जैसे भीष्म पितामह
2: करता था मैं, दुर्योधन करता था मैं।
1: अच्छा, कड़क आवाज वाला जो,
2: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो। लोगों को लगता अरे महाभारत हमारे घर में आता और उसका कलाकार सामने खड़ा है। तो बहुत लोगों का प्यार मिला उससे मुझे।
1: कुछ करके बताएं।
2: जैसे मैं महाभारत का एक सीन आपको सुनाता हूँ, जिसमें दुर्योधन कुछ कह रहे हैं और बीच में फिर मुकेश खन्ना, भीष्म पितामह को समझाएंगे, तो आप सुनिएगा।
1: जी जी जी।
3: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने भरी सभा में कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसी वक्त उसे बंदी बना लूंगा, समझे?
1: क्या बात है, बिल्कुल पुनीत सर वाली आवाज है।
2: आप भीष्मता में समझा रहे,
1: वो कड़क आवाज
2: वो समझा रहे। कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र, समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन को। अरे कहने से पहले तनिक सोचता भी नहीं है। अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स, तो बताओ क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स?
1: क्या बात है।
2: तो इस तरह से
1: वो जमाना याद आ गया जब
2: बचपना था,
1: कर्फ्यू लग जाता था।
2: जी जी,
1: रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये स्कूल में आप करने लगे?
2: ये मैं स्कूल में करने लगा था।
1: फिर आगे
2: मैं धीरे से बढ़ा तो अपने शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
1: लोग
2: शहर,
1: बुलाने लगे
2: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में, फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं, जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं,
1: हाँ।
2: उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
1: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए?
2: जी बिल्कुल। मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
1: घर से डांट पड़ती थी?
2: हाँ घर से डांट पड़ती थी, लेकिन
1: पढ़ लिख लो।
2: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
1: अच्छा।
2: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था, और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
1: अरे
2: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
1: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
2: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
1: ये कैसे हो गया,
2: ये कैसे संभव होता है। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में, तो प्रसन्न होते थे बहुत।
1: वाह वाह।
2: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं।

0: बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
1: देखिए, मैं अपने मध्य प्रदेश में सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
0: बिल्कुल
1: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे। कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेज के प्रोग्राम होते
0: फिर
1: थे,
0: राज्य स्तरीय।
1: हाँ, तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोच रहा था अब कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
0: अच्छा।
1: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
0: अरे बाप रे।
1: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
0: उन तक आपका नाम पहुंच गया था।
1: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं, इस तरह की समितियां कमेटियां होती हैं, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
0: वो अच्छा करता है।
1: वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था, मेरी माँ ने, अम्मा जिनको बोलते हैं, उनने फ़ोन उठाया, बोले बेटा वो तो भोपाल गए हैं शो करने, तो कल आएंगे। बोले ठीक है, कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा क्या? आप तो कंपटीशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कंपटीशन होता नहीं है। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं एक प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रुपये बोलता हूँ, मुझे 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो मेरा
0: इतने
1: तो,
0: ऑनेस्टली बता दिया।
1: हाँ। तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ, और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
0: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी चीज थी कि
1: जी
0: उसमें जितने लोग शामिल हुए
1: जी
0: सब जो हैं वो अलग-अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
1: जी बिल्कुल
0: और
1: है,
0: बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
1: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे।
0: बिल्कुल। तो
1: हाँ
0: जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
1: जी
0: उसमें आप शामिल थे।
1: साहब, ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय,
0: जी,
1: जिसका मतलब ही होता है आरंभ होना,
0: और आरंभ से आप थे,
1: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था,
0: मतलब आप ही से शुरू हो रहा है।
1: मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
0: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस सीजन
1: उसमें
0: में? एहसान थे।
1: राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरैशी थे, और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
0: गजब गजब
1: तो
0: गजब।
1: ये सारी
0: मजेदार कॉमेडी करते थे वो।
1: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी
0: गजब। उसको तो लोग बहुत देखा करते
1: जी,
0: थे और
1: बिल्कुल
0: लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
1: सच्ची बात।
0: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़ के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
1: हाँ जी
0: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
1: जी,
0: है ना, जो वो कहाँ के एहसान भाई,
1: वो
0: सतना
1: मध्य
0: के,
1: मध्य प्रदेश के हैं,
0: सिवनी के।
1: सिवनी के हैं वो।
0: हाँ,
1: जी
0: तो वो अपनी शैली लेके आए,
1: जी हाँ
0: आपकी अपनी शैली।
1: जी बिल्कुल
0: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था।
1: नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे, और ना तो हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे,
0: जी
1: क्योंकि था ही उतना,
0: बिल्कुल।
1: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
0: क्या बात है।
1: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
0: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 एपिसोड 1 आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने?
1: वहां पर ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं, उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए, तो हमने अपना सुनाया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। तो
0: अच्छा।
1: उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप,
0: वाह।
1: और ये आपको एक एपिसोड में 4 अलग अलग दौर होंगे, पहला हाँ। दूसरा तीसरा, तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए, फाइनल में ये सुनाइए।
0: करेक्ट है।
1: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए, और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
0: क्या था वो?
1: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था वो, कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको, तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है, बोल रहा कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स आ रहा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर फंसा लिया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था,
0: हाँ।
1: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के 4 स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूँ तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है, तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूँ, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूँ, तो लोग समझते मैं चढ़ रही हूँ, धक्का दे के ऊपर कर देते हैं। मैं 4 स्टेशन से ट्राई कर रही हूँ उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
0: कहाँ से सोचते हैं आप?
1: तो इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
0: अच्छा, लेकिन लगातार जब मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ और जो अपने कमान के तीर हैं वो तो खर्च होते जा रहे थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो फिर कैसे सस्टेन किया?
1: देखिए एक फसल कटती है तो दूसरी
0: तो आ जाती है।
1: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए।
0: हाँ।
1: और जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा?
0: बिल्कुल।
1: तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
0: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना? 20 साल,
1: 20 वर्ष हो गए।
0: 20 वर्ष में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी?
1: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूँ 20 साल पहले क्या सुनाया था। ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही सुनाते हैं, कुछ और चलते रहता,
0: क्योंकि सब बदल गया है,
1: सब जमाना बदल रहा है पूरा।
0: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था?
1: जी बिल्कुल, कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, सब आपस में एंजॉय करते थे।
0: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था? इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
1: बहुत मजे करते थे। मतलब जो वहां नहीं होता था,
0: हाँ,
1: उसकी बातें चलती थी।
0: अच्छा।
1: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी, और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की, कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी।
0: हाँ।
1: तो बहुत मजेदार होता था।
0: एक दूसरे की भी करते थे?
1: एक दूसरे की जैसे? भी करते थे। वो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो, हमारे
0: मानेंगे।
1: आप नायकर साहब को सुनते हैं?
0: अरे नायकर साहब हमारे शहर के हैं।
1: तो वो जब बात करते थे तो बोलते थे अरे दहिया ये देखो भैया हमारा तो ऐसा है कि हम जो हैं तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किए और भैया चले गए जबलपुर, ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
0: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी, और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव।
1: जी जी। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
0: अरे वाह क्या बात है। एक कॉमेडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैनी नजर रखना और दुनिया की धड़कनों को पहचानते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
1: जरूर, इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो हाँ। खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है।
0: हाँ।
1: मैं स्कूल में जो बच्चे हैं
0: हाँ।
1: और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाए, बहुत दबाव होता है बच्चों
0: बहुत ज्यादा
1: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूँ।
0: अरे गजब।
1: और उनको ये समझाता हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
0: वाह वाह वाह।
1: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
0: कितनी प्यारी बात है।
1: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूं और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूँ, उनके स्कूल की बातें करता हूँ, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूँ, तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया
1: जी,
0: है ना, और आप मुंबई के हो गए
1: जी।
0: जिंदगी कितनी बदल गई?
1: जिंदगी बदली तो है, लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता है, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
0: क्या बात है, एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
1: देखिए, काम तो बहुत सारा किया, लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोग, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था, पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा, लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके? और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
1: जी। पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं,
0: परफॉर्मर नहीं था,
1: और अगर वहाँ छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो वो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे, तो उनको लगा कुछ तो अच्छा कर रहा है।
0: जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने
1: जी,
0: तो वो कैसा मोमेंट था?
1: वो तो अद्भुत था, वो बड़ी मजेदार घटना है। मेरे पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो
0: जी जी।
1: तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब, बड़े बड़े, और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले, एक दिन मेरे कान में आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले, यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? तो बोले, जी सर। दाहिया साहब, ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले, साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले, उनको कभी आते हैं यहाँ? बोले हाँ आते हैं। बोले, आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
0: अरे गजब गजब।
1: तो वो मूवमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब कहा।
0: कितनी प्यारी बात है, मतलब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा,
1: बहुत अच्छा लगा
0: कि बेटे ने कोई तो उपलब्धि हासिल की है।
1: जी जी।
0: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है। लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ।
0: हाँ हाँ।
1: और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूँ, तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूँ। मैंने परसाई जी को खूब पढ़ा हुआ है।
0: क्या बात है।
1: उनका पूरा जितना भी साहित्य है छह खंड में, वो मेरे पास है।
0: हाँ।
1: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूँ। और एक बड़ी अच्छी चीज ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूँ या जो देखता हूँ वो मुझे याद हो जाता है और बरसों बरस तक याद रहता है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद रहता है, और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूँ, जैसा मौका आ जाए।
0: क्या बात है।
1: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूँ उनका कि इनकी रचना है ये।
0: हाँ हाँ।
1: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ,
0: जरूर,
1: ये परसाई जी की, मैं उनकी रचनाएं घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
0: वाह वाह।
1: लेकिन एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
0: जरूर।
1: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं, और आजकल बड़ा मीडिया में छाया भी है, हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं डॉग के ऊपर, बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते हैं, क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला, ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।

0: याद आ गई मुझे ये रचना।
1: तो वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्स लेस कुत्ता है, मैनर्स ही नहीं है। बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्स लेस किसको बोला है? मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है, और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप। हमारा नस्ली कुत्ता बोले, रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है। अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता, आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो, पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ तो बोले आपको भी मैं जानता हूँ, उसके एक साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही है।
0: क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं वो बहुत तेज होती है,
1: जी
0: बहुत तीखी होती है।
1: जी
0: तो देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म कर दें आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
1: जी जरूर जरूर, मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
0: अच्छा।
1: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है, इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
0: ओके।
1: तो ये एक कहानी है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज़्यादा चलाता है उसको, और जब ज़्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया, डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया, बोले डॉक्टर साहब ये सब होशियारी के चक्कर में हुआ है। बोले कैसे? बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ कि एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यहीं हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं होशियार आदमी, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर। अब दूसरे छोर को मैंने खंबे से बांध दिया, अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब, और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब, और मैंने मन में सोचा कि खंबे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊंगा तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का हूं। तो जैसे ही मैंने खंबे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से उठे, मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, अपन बहुत होशियार आदमी है। 5वीं मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे, हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
0: लो भैया,
1: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ रहा डॉक्टर साहब, अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो वजन के कारण फट गया, और जैसे ही फटा तो उसकी ईंट गिर के हो गई खाली, तो वो हो गया 15 किलो का और मैं 50 किलो का। साहब, डॉक्टर साहब, मैं ऊपर से सरसराता नीचे आऊंगा, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे, और जैसे ही मैं पांचवी मंजिल पे पहुंचा तो खाली ड्रम आके मेरे पैर में लगा, तो दोनों पैर टूट गए। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, नहीं तो अपने हाथ पैर सब टूट गए, यहां से नीचे गिरे तो साफ ही हो जाएंगे। मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता नीचे जाऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो ईंट के ढेर में गिरा। तो मेरी कमर टूट गई डॉक्टर साहब, और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आया तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी।
0: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
1: जी जी।
0: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
1: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं, कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहाँ जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहाँ से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया।
0: अरे गजब।
1: 1-1.5 मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
0: वाह वाह वाह।
1: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया। जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया, जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य रस बनाया, तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, देश राव श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
0: वाह।
1: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए। लेकिन अगली लाइन में कहा है, देश राव श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूँ। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
0: वाह वाह।
1: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था, तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्य रस को बिखेर दो।
0: वाह।
1: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूँ और अब मैं यहाँ से उनके हास्य रस को बिखेरूंगा।
0: क्या बात है।
1: तो ये बात जब मैंने वहाँ कही तो बड़े खुश हो गए वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुनाने देना।
0: वाह वाह वाह वाह। मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का आपने पालन किया।
1: जी बिल्कुल।
0: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है, और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व कम है, तो क्या राय है आपकी?
1: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य एडल्ट फिल्में पहले भी थी, सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती हैं। लेकिन जो अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छा सामाजिक चीज़ें होती हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, चलती रहती हैं। अब नायकर साहब को देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं, वो पिछले 60-65 सालों से मंचों पे हैं और आज भी हैं वो।
0: बिल्कुल,
1: आज वो 80 प्लस की एज में हैं
0: जी,
1: और अभी भी वो मंचों पर दो दो ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे परफॉर्म कर लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूँ। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहाँ बहुत भीड़ हो, वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा, वो अभिनय की दुनिया का है
1: जी।
0: ये कहाँ से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
1: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो सुविधाएँ थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएँ, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएँ। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा ज़रूर होता है।
0: क्या बात है।
1: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज़्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उम्र ऐसी होती है ज़्यादातर लड़कों को, यही होता है, एक वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूँ और मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था।
0: और वो पूरा हुआ।
1: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है। मेरा अपना पूरा हुआ है।
0: जी जी
1: जी। सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
0: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी।
1: जी, मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापतागंज किया है।
0: लापतागंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
1: जी जी, लापतागंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया, जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए, अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था। उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
0: वाह वाह वाह।
1: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हीरो हीरोइन नेपाल के हैं, आर्यन अधिकारी और नीता धुमाना, ये वहाँ के बड़े स्टार हैं नेपाल के।
0: जी जी।
1: और कुछ एक्टर वहाँ के थे और कुछ हमारे यहाँ के, तो उसमें राजपाल यादव हैं, दयाशंकर पांडे हैं, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफ़ी। तो वो फिल्म मैंने की है। कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज, ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
0: जी।
1: और इसमें मैं राजपाल यादव और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: तो ऐसी कुछ फिल्में की हैं मैंने।
0: कितना डिफरेंट है मंच पर परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
1: बहुत फ़र्क है, बहुत ही फ़र्क है। क्योंकि सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि मंच पर हम करते हैं एकल अभिनय, उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कब खत्म हो रहा है, उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
0: बिल्कुल। तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
1: जी बिल्कुल। मैं अभी जो बच्चों को लेकर कुछ सुनाता हूँ तो उसके ऊपर से मैं सुनाता हूँ कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था, घर में कोई आ जाए तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे, बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा मैंने, कहा बेटा एक चीज़ बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूट कर पॉपकॉर्न बनता है गर्म तवे पर, तो ये उछलता क्यों है? तो बोलता अंकल आप उस पर बैठ के देखो समझ में आ जाए। तो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसी बातें हैं उनकी कि जो उनका जवाब होता है वो हमारी समझ से बाहर होता है।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जहां अब चारों तरफ कॉमेडी है, लोग पॉडकास्ट में भी कॉमेडी कर रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, टेलीविजन पर कंटेंट है, ओटीटी पर कंटेंट है, तो क्या एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं?
1: हाँ बढ़ तो गई हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पहले अगर एक

0: आधा घंटे का कंटेंट किसी के पास होता था तो बरसों बरस उसको सुनाते रहता था। एक शहर में सुनाया, कल जाके दूसरे शहर में वही सुना दिया, परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहाँ हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह। तो जब हम अगले शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुंचा हुआ होता है, तो वहां जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है,
1: हर बार कुछ
0: तो
1: नया,
0: हमेशा कुछ नया करते रहना
1: पर पुरानी है। चीजों की जो लोकप्रिय हो चुकी है उनकी फरमाइशें भी आती हैं।
0: हाँ, फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है।
1: आपके लिए किस तरह की फरमाइशें आती हैं?
0: मैं अगर मध्य प्रदेश में हूँ तो वहाँ की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूँ, और अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा अपना जो स्टाइल है लोग चाहते हैं कि वो सुनाएं।
1: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें।
0: हाँ, क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड, पूरी
1: बिल्कुल।
0: दुनिया में जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको। तो बुंदेली में वहाँ के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहाँ के लोग ही समझ पाते हैं, भाषा का है वो। जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे। अब एक आदमी गया, बोले मे आई कम इन सर, अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहाँ से। तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बोले आप तो उनसे भी ज़्यादा बात कर रहे हो, यहाँ उस आदमी की ज़रूरत है जो कम बात करे। अब ये हमारे यहाँ का था, बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया, बोले क्या पूछा, अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला मुझे अंदर नहीं आने दिया, बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध मुझे भी नहीं आने दिया, अब बोले देखो मैं जा रहा हूँ। ये गए, इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए। बोले आ
1: दो ही शब्दों में निपटा
0: दिया, दो शब्दों में निपटा दिया। तो बोले आ जाओ, तुम्हारी जरूरत थी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: क्या
0: ऐसे
1: बात है।
0: लोकल की भाषा के
1: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा है।
0: जी जी जी,
1: है ना। और कुछ बुंदेली में?
0: बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और बहुत वायरल है
1: जी,
0: थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का है वो,
1: जरूर।
0: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उन्हीं उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है, तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ। और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं, और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव-गांव से निकली हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, नहाने स्नान करने, तो ज़्यादा आवागमन के साधन नहीं है। एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक 3 पहिए का टेम्पो चलता था जिसमें 15-20 लोगों को वो बिठा के, और वो ड्राइवर ऐसा लटक के चला,
1: लंबा वाला।
0: हाँ, तो वो टेम्पो में एक गांव की महिला पहली बार बैठ के नर्मदा जी में स्नान करने जाती है। अब रात को ही तैयारी शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ जो बच्चों के जो नाम होते हैं वो बड़े गांव के हिसाब से रख देते हैं,
1: बिल्कुल
0: शहर जैसे अच्छे नाम नहीं होते। काला देखा तो करिया नाम रख दिया, गोरा देखा तो भूरा रख दिया, थोड़ा हेल्दी देख गया तो लड्डू गोपाल रख दिया। तो उनके बच्चे थोड़ा काला था तो उसका नाम रख दिया था करिया। अब पिताजी को वहां दद्दा बोलते हैं और माँ को बाई बोलते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी और करिया की बाई यानी करिया की माँ। अब दोनों की बात चल रही है, कल नर्मदा जी नहाने जाना है, तैयारी शुरू हुई है। करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया, और करिया की बाई उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लइयो, भुनसारे अपन नर्मदा सपड़ वे चल
1: भुनसारे
0: और सकारू जल्दी उड़ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले।
1: हो
0: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई थी,
1: निकल गई।
0: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है,
1: बस तो गई,
0: अब का हुई है, बस तो गई। तो अब इनकी बात चल रही है, करिया के दद्दा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चली आ। अब वो आगे कैसे गए, वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ।
1: ठीक है,
0: बोले कल का भाई जी करिए कहने लगे कि चल तेरे का नरब दस पड़े भी धलना हूँ। तो भाई भंसार हम उठे बन बास्केट में धोतिया लपेट के धरी और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तन चले गए। वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी। तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है। तो

0: बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है, तो भाई बाने एक कोप्पा भर के पानी ले आओ और बाँ में ले के टिको, तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गओ। तो मैंने कहा ये उमेर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम है, तो भाई बाब करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकारी और बाकी बोनट में ऐसी लपेट दई।
1: हाँ
0: ओबर रस्सी लपेट के जीवन बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाकी टायर पे धरो, ओबर ड्राइवर से कहने लगो हूं। तो भाई ड्राइवर ने भी कह दई हूं, और जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीवन ने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू होगा। अब वो ऐसो डगमगा रहो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जीजी बा ड्राइवर के बगल में एक टीढ़ो सो हैंडल लगो थो, बान बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहन लगी जो गेयर है जैसे चला थे जो। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए
1: पलट तो नहीं जाएगा।
0: तो मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहने लगो रोकत नहीं हूं, रोक हूं तो पीछे लुढ़क जे। तो मैंने कही फिर लगे जान दे, और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
1: अरे दद्दा रे,
0: फिर काय की नरव दजी जी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।
1: क्या शुद्ध बुंदेली मजा आ गयो। क्या शानदार बुंदेली रचना आपने सुनाई, सच में मजा आ गयो। ये जो बुंदेली लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस भाषा की जो मिठास है,
0: जी जी जी,
1: है ना, बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है,
0: सच्ची बात।
1: तो जो प्रांतीयता कॉमेडी में आप लेके आते हैं वो कितना काम करती है मंच पर?
0: बहुत काम आती है ये भाषा जो है। पता नहीं क्यों भाषा को लेकर बहुत विवाद देखने को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ भाषा कभी विवाद का विषय होती नहीं है। भाषा सिर्फ संवाद का विषय होती है। हम आपस में बात करते हैं, आप अपनी संवेदनाएं अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से, वो भाषा है। भाषा के लिए क्या लड़ना। मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए, तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो बोली लव कर लव कर, मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला।
1: लोकर लोकर बोल रही थी,
0: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा ना बहुत जरूरी, सीखना पड़ता है। मैं लोखंड वाला में रहता था, 2005 की बात है, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इतने लोग डूब गए। 4 महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे होर्डिंग वहां पर, उस पर लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा, बाढ़ दिवस का शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार 4 महीने पहले लोग डूब के मर गए, ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी। हा? क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला।
1: अच्छा,
0: मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा, तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की, तो अब वो मराठी है, उनको सारी मराठी आती
1: क्या
0: है।
1: उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी करती
0: नहीं
1: है?
0: वो बिल्कुल नहीं है, और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूं, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूं। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं, वह घर पे जाके पूछता हूं ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूं।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है,
1: हाँ,
0: दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें,
1: हाँ,
0: और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे,
1: बिल्कुल
0: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे, अपन अपनी में, तो ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए,
1: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
0: हाँ, ऐसा होता नहीं है।
1: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिसनर हैं?
0: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा, अच्छा

0: का बन सकता है।
1: तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूं
0: और घर में
1: बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूं। बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूं और मैं कोशिश करता हूं कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
0: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
1: बिल्कुल बनाई है।
0: सुनाइए।
1: देखिए मैं
0: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको।
1: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे हैं मेरा रंग रूप कैसा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली। अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया। उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। तो यहां भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं।
0: लो
1: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर। उसी को देखते जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज कॉमेडी शोज देख कर कि वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
1: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैं मुंबई नहीं आया था।
0: यस।
1: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल।
1: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था और मैं कभी सोचते ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं मेरे पास आओ यहां आओ। तो बस काम अच्छे से करते रहो। आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई तुम यहां के लिए नहीं बने हो तुम कहीं और जाओ। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए। एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए।
0: हाँ।
1: जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहां पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत सही सलाह आपने दी है। और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ। तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: वैसे तो किशोर कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना। वो है फिल्म डॉन का, क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूं, जिसका मुझे था इंतजार
0: वो घड़ी आ गई।
1: वो घड़ी आ गई।
0: वाह।
1: तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो वाला गाना बजाया जाए।

0: उदय जी बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आगे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने के लिए।
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और समृद्धि नायक। संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
4: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
2: इंतजार कीजिए, एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं।

0: वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जब मैं लोगों को हंसाता हूं तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।
6: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने AI की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में AI, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि AI और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: बागेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार रिलीज किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का।
3: नमस्कार, और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी कि सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जुएल थीफ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में

0: गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
3: अब
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल में आनन बख्शी का लिखा गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

0: जाने कहाँ हो के बहार,
1: जाने कहाँ हो के बहार।
2: साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी

0: अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से लेते हैं आनंद विविध भारती के कार्यक्रम का।
3: प्रेम की उस कहानी को सुर देती है जिसमें मिलन की खुशी, बिछड़ने की कसक और साथ बिताए पलों की सुहानी यादें एक साथ धड़कती हैं। उसमें कहीं भरोसे की मिठास है, कहीं जुदाई का डर, तो कहीं फिर लौट आने की उम्मीद। अगला एक साथी ने अलग मैसेज लिखा है कि दो दिलों की दास्ता है इस कहानी में, मिलने की खुशी है, बिछड़ने का गम है और वो हमेशा साथ रहे। आज के गीत आने की आशा और बिछड़ने के दर्द से भरे हैं और अपने प्रियतम को पास रोक लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज की इबारत में मिलन की खुशी भी है और जुदाई का गम भी। तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, और जब मिले तब देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं। अच्छा तो हम चलते हैं, चले जाना जरा ठहरो। मोहब्बत में कभी मंजिल मिलती है तो कभी जुदाई का डर सताता है। उसके बिना बहारों की खुशी भी अधूरी लगती है और दिल चाहता है कि वो कुछ पल और ठहर जाए। चाहत और भरोसे के सहारे प्यार के तूफानों को पार करते हुए मन कभी साहिल की तलाश करता है। आना जाना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है, मगर साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठकर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार है अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते, और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे वो हमें मिल गए। विशाल आनंद अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देव आनंद के भतीजे हैं और विशाल आनंद ने इस फिल्म में अभिनय किया था। और साथियों, जो मैसेज मिला है ये है कि इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि इसी फिल्म से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को बड़ा ब्रेक मिला था। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रवि गुप्ता और आशा, यानी कि विशाल आनंद, सिमी ग्रेवा।

नाजनीन और डॉक्टर श्रीराम लागू। साथियों बिछड़ के फिर मिलेंगे, यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। ज़िंदगी का सफ़र मुलाकातों और जुदाई का एक ऐसा सिलसिला है, हर मिलन के बाद बिछड़ना पड़ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलता रहता है कि हम बिछड़ कर फिर मिलेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जो उम्मीद और रिश्तों की गहराई को बयां करता है। मिलन की आस बिछड़ने के दर्द को कम करके दिल में नई आशाएं जगाती है। वक्त के साथ दूरियां कम होती जाती हैं और दोबारा मिलने के रास्ते बनते हैं। सच्चे रिश्ते फासलों से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नए और खूबसूरत मिलन की शुरुआत का इंतजार है। साथियों, जब कोई आपसे मिलकर या मुलाकात के बाद जाने लगता है तो आप उन्हें कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएं हमें भी। और किताबी भाषा की जगह थोड़े आसान भाषा में अपने जवाब लिखें। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले मिलकर बिछड़ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि अचानक ऐसे लोग सामने आ खड़े हुए या किसी डगर पे दोबारा मुलाकात हो गई तो आपको कैसा लगा? उस खुशी को हमारे साथ बांटिए और साथ में ये भी बताइए कि मुलाकात के बाद, यानी कि टाटा, बाय बाय, सायोनारा जैसे कौन से गीत आपके जहन में और मन में इस वक्त आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। और अब बात होगी 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की, एक मशहूर बॉलीवुड संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी प्यार, धोखे और रिश्तों के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। कई नाटकीय मोड़ आते हैं जहां अजीत और वर्षा के प्यार की परीक्षा होती है और अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अजीत, वर्षा, अनिल और सावित्री की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तब तक आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढलें। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे, ठहरो अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नज़र आया तो दिल ने कहा, भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमिया, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहाँ एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ उसके साथ उसका वो ख़ास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा, तो ठीक है सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फॉर्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी। तो ठीक है, कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है, तुम दूर जाने की बात करते हो जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़ कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज़्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियाँ, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी ख़त्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, और आपके जवाबों का हमें है इंतज़ार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश। अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहां एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत ख़ास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है। एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी। अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं। हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है। कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आ जा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था। बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर और विजय यानी के संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत कमल कपूर और कुमकुम, इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज़ आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज़ की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफ़र, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं, ये शुभ

मिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वी राज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र, यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफ़र के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखांत तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड। और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के

ये बन के हम सफ़र आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: Akashwani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गिरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
0: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
5: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
6: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी

0: जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
2: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है।

0: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज। उसके तुरंत बाद दोपहर समाचार लेके गए थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है 16वां साल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए।

0: मेरी सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से कह दो।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, गराम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ़ साफ़ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदाराज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत। मन चाहे।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौल वला कुव्वत।
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: हला, मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं, आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार, ये मैं मर गई। अल्लाह।
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी,
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप बुबु? सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है के?
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो, कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
2: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रहे हैं।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
2: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
2: उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
2: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकरर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
2: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौल वला कुव्वत।
2: हाँ सरकार, बुबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
2: नया बुबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा, छोड़ो
2: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ, हलीमा ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
2: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
2: या अल्लाह।
3: अरे भाई जहांगीर साहब और छमन मियां, अरे भाई क्या हाल चाल है?
4: आपकी दुआ है अफजल भाई। अम्मा यार क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
1: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है?
4: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा अम्मा ये क्या किस्सा है?
1: कौन सा किस्सा?
4: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
4: वजह?
1: मैं इसे बदकारी समझता
4: हूँ। ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
1: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
4: अम्मा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
1: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
4: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
1: ये घर कुछ पागलखाने से कम है? जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
4: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
1: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
4: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
1: आप तशरीफ ले जाइए।
4: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
1: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
4: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलाद नरीना ना पैदा हुई।
1: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
4: मगर बांदी से क्यों भी देखते हो? शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
1: और बांदी?
4: बांदी काम आएगी।
1: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगी।
4: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म और रिवाज को नहीं समझती हैं।
1: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
4: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
1: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
4: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
1: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
4: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
1: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
4: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
1: जब्बार, अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
4: तो एक काम करो साहबजादे।
1: क्या?
4: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
1: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
2: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
1: हलीमा,
2: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती है।
1: नहीं हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई, हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
2: मेरे अच्छे नवाब।
1: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा हम इंसान हैं फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो, तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा। रहम करो हलीमा।
2: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल कैसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
1: हलीमा मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
2: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
1: मुझे बांदियों से घिन आती है तो मैं तुमसे शादी करूंगा।

0: खवास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं, सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
1: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
0: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
1: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
0: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मिराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
1: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
0: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
1: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
0: मगर हूँ आपकी।
1: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
0: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
1: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
0: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
1: हलीमा, हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा, हलीमा।
2: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गई, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
3: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
2: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
3: हाँ बेगम, भला इन आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
2: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
3: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी कि साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
2: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
1: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
0: मेरा जी चाह रहा है।
1: हमें छोड़कर चली जाओगी?
0: जल्दी आ जाऊंगी।
1: कितनी जल्दी?
0: थोड़े दिनों बाद।
1: कितने होते हैं थोड़े दिन?
0: यही कुछ 6-7 महीने।
1: 6-7 महीने?
0: आहिस्ता बोलो।
1: हम मर जाएंगे।
0: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर, मेरे नौशा, बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खिदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
1: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
0: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी। बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
1: बच्चा?
0: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
1: मेरे सर की कसम खा।
0: नहीं अल्लाह नहीं।
1: हलीमा, तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
0: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
1: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
0: जी।
1: बच्चा कब तक होगा?
0: 6 महीने बाद।
1: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
0: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
1: तुम गांव नहीं जाओगी।
0: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
1: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
0: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
1: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
0: सरकार।
1: शट अप।
4: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
5: ये लीजिए।
4: ये शह वो मारा।
1: भाईजान, मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
5: अम्मा, इस वक्त बड़े जोर की बाजी जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
1: भाई जान,
5: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
4: शेह हजमत नवाब, शेह।
1: उफ, प्लीज भाई जान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
5: उफ, कहो क्या कहना चाहते हो।
1: जरा मैं।
5: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
1: भाईजान,
5: अम्मा कह भी चुको,
1: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
4: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
1: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
4: सरवरी जालिम, पटाखा है पटाखा, है, है, क्या उठान है। अम्मा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती
1: अफजल भाई।
5: अच्छा जाने दो, आगे चलो।

0: अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
1: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रही है। वो होती तो मजा न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान, ये गस भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
0: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं। मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
1: बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
0: आय हाय बुबू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
1: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
2: ओहो, नायाब आई है। चली कहाँ? क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
1: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं। खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बम्बई से बनकर आएंगे।
2: नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
1: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
2: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
1: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
2: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बन करके क्या बिगाड़ लिया। जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
1: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती है, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती है बेगम। नौच, यू कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके?
2: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा, हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: कुद्दूस भाई, आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे?
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे। वल्ला क्या पटाखा है।
4: कमीने पाजी।
3: छमन, होश में आओ, क्या पागल हो गया?
4: हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा। चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा।
5: जी सरकार।
4: कौन सरवरी?
5: जी।
4: तुम यहाँ क्या कर रही है?
5: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है? कुर्ते में लगा दो।
4: चल भाग यहाँ से, और हलीमा को भेज।
5: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है।
4: हलीमा कहाँ है?
5: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हम्माम में लगा दिया है।
4: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
5: अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
4: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी। चल भाग।
5: हम नहीं जाते।
4: कहाँ है हलीमा, बता।
5: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
4: बता, नहीं बताएगी?
5: बताती हूँ।
4: बोल।
5: वो उधर शागिर्द पेशे में।
4: क्यों?
5: वो उसका जी अच्छा नहीं है।
4: ओह,
5: ये मियाँ खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
4: फरखुंदा बाजी।
5: अरे छमन मियाँ, क्या पैदल भागे चले आ रहे?
4: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी, वो मर रही है।
5: अहे कौन?
4: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोलिंग भको मत।
5: ठहरो,
4: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
5: नहीं मियाँ, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं।
1: बुबू, नायक बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है। अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
5: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
6: ये क्या किस्सा है नायाब?
5: लॉरी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियाँ भी हैं।
6: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
1: लीजिए, वो आ गई।
5: तस्लीम मानी जान।
6: जियो, ये मुझे अस्पताल की लॉरी क्यों आई है?
5: हलीमा को लेने।
6: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
5: इस वक्त बहस ना कीजिए, पैलोठी का बच्चा है, अगर
6: तुम्हारी बला से। तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
5: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
6: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
5: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
6: क्या मतलब?
5: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
1: पुलिस? या अल्लाह,
6: मामू को

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने हिमालय क्षेत्र में आई विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ के बाद जलवायु लचीलापन तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के संबोधन में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देश उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति नेपाल की गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, इन्हें एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन न होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। उधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बिहार में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलम केंद्र है। आइए अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का।
3: ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था।
4: हाँ,
3: उनके लिए इतना कहना ही
4: बहुत
3: काफी
4: बड़ी
3: था।
4: बात
3: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है।
4: कम है जी,
3: है ना
4: जी, जी।
3: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब। उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने, कार्टर रोड। और मैं गई उस वक्त, मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी
4: जी,
3: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीज़ें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है
4: जी।
3: तो हम गए और वो भी टेनिस खेलने गए थे।
4: अच्छा।
3: वो दिलीप साहब के साथ खेलते थे टेनिस। शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, बोले बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ, प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई
4: जी,
3: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए
4: रात की,
3: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले, मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
4: अरे
3: तो अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी, इतना ही था बस
4: जी।
3: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत, उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
4: जी, जी,
3: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
4: आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है? और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: थी।
1: बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू
0: बहुत।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचमदा ने सिखाया पता है, उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी,
1: शर्मिला हाँ। जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे हाँ आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी,
1: आज
0: जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी,
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी।
0: अच्छा
1: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी,
1: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे, दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे
0: अच्छा,
1: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो। उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी,
1: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
0: वो गाएगी,
1: हाँ बोले गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
0: जी
1: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आवाज़ ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज़ जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
0: सूट करती है,
1: इस करके ये गाना मुझे मिला।
0: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, बताइए
1: प्लीज,
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता,
1: बिल्कुल
0: आप ही का गाया हुआ सुन
1: जी, जी।

0: बुलाना तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तो आ जा।
1: हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
0: जी जी
1: देखिए
0: जी
1: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये ना रा रा, और सॉफ्ट उसी को बुलाना तो आ जा आ जा।
0: क्या बात है, क्या
1: तो
0: बात है,
1: ये मैंने
0: ये
1: उनसे
0: आधार का
1: सीखा,
0: जी, ये पंचम धाम में ही ये
1: या
0: गुण
1: ये
0: थे
1: उतार चढ़ाव
0: जी
1: डायनामिक सम जिसे
0: जी
1: कहते,
0: जी जी
1: कहाँ कितना आपको जोर देना
0: देना
1: है,
0: है,
1: कहाँ आपको कितना सॉफ्ट करना है,
0: वाह
1: कहाँ आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
0: वाह
1: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
0: जी जी जी मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का
1: हाँ
0: प्यार मिला, स्नेह मिला,
1: बहुत
0: उस
1: बहुत
0: छत्र छाया में आपने
1: बिल्कुल,
0: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
1: ये मेरा
0: जो
1: भाग्य ही है।
0: नसीब नहीं
1: हाँ हाँ
0: मिलता है, अच्छे
1: बिल्कुल,
0: अच्छों को नहीं मिला है।
1: नहीं
0: अभी
1: मिल,
0: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
1: ना ना
0: जिनको
1: ना
0: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
1: ना
0: सके,
1: ना
0: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया, लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म थी, है ना
1: जी,
0: बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो था, वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: वाह,
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना है।
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के भी करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान है।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल जी।
0: तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी कोल्हापुरी
1: ने।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर आते
1: जी,
0: थे।
1: जी, जी,
0: तो वहाँ एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया।
1: अच्छा।
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी,
1: नासिर हुसैन
0: जी, कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ,
0: क्या
1: हाँ,
0: नहीं।
1: हाँ।
0: मैंने कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात।
0: मेरे लिए काफी
1: जी
0: है।
1: जी
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है अब,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: बीते दिन, देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट, पुश बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचमदास से
1: जी
0: सीखी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: डा रा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात धर्म करम की फिल्म,
1: धर्म करम भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तो नाम, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है।
1: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था, प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, कर दो ना। अच्छा, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया, तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए। तरम पम, उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
0: अरे
1: पर उनका बड़प्पन देखिए। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ, मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापीदा की पहली फिल्म थी
0: जी,
1: नन्हा शिकारी।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे। इवन रिकॉर्डिंग्स में वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप।
0: अरे
1: बड़प्पन देखिए,
0: क्या बात है।
1: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
0: ये नम्रता भी,
1: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
0: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
1: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
0: अरे
1: राज, बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
0: क्या
1: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस
0: बिल्कुल
1: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
0: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
1: ये ईमानदारी
0: जी
1: है
0: जी,
1: ना
0: जी,
1: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी,
0: जी, जी।
1: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
0: जी,
1: क्यों मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है
0: फिल्म धर्म कर्म का
1: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे।

0: लेकिन दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी के
1: के
0: मोल, ये
1: मोल।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए
1: बिल्कुल
0: ये गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइएगा
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी।
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी,
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
0: जी शिवांगी,
1: जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर
0: की बहन,
1: और श्रद्धा कपूर की मम्मी
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड़ वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और
1: मैं
0: ताउम्र याद रहने वाली बात।
1: और ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनके शुरुआती दौर में
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस,
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी,
1: था
0: जी,
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना, आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच गया।
0: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका, जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला।
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी,
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
0: पुष्पा जी की आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: कीजिएगा जरूर, है
1: तब मैं आपको बताऊं,
0: मेरा ही सवाल है,
1: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
0: खड़े हो गए,
1: बस वो गाना
0: जी,
1: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोला, पता है ये मेरी दीदी ने तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया,

0: और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं
0: हम कितने भाग्यशाली हैं। आप प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा
1: जी
0: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा
1: जी
0: लिया। मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया। उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ वो
0: पहचान, वो
1: स्थान।
0: स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप
1: बहुत
0: रे।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए ये
0: इतने
1: गीत हम सुनते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओ आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी कार्यक्रम के साथ ही आज की पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज शाम 6 बजे से आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आरंभ किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे यानी मीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6:20 हुए हैं, यानी समय हो चला है आज की दूसरी सभा आरंभ करने की। मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आरंभ करती हूँ आज की दूसरी सभा। दोस्तों, पहले आप सबको आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं।

6:05 से आप आनंद लेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों का। सबसे पहले आप सुनेंगे मार कार्यक्रम, जिसमें आप आज आनंद लेंगे कुछ मार आधुनिक गीतों का रोहजालून थियक और उनके साथियों की आवाजों में। 6:25 का समय रहेगा जेमी कार्यक्रम का, जिसमें आप आज सुन पाएंगे कुछ जेमी लोकगीत गायक कलाकार किहुंग बुइले रियामे और उनके साथियों की आवाजों में। 6:45 का समय रहेगा आंचलिक बातोरी का, जो रिले किया जाएगा आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। 7:00 स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे डिमासा लोकगीत, गोपीनाथ हाफलोंगबार और उनके साथियों के आवाजों में।

डिमासा कार्यक्रम के पश्चात आप सुन पाएंगे कार्बी कार्यक्रम। समय रहेगा 7:20 का, जिसमें आप आज आनंद ले पाएंगे कुछ कार्बी आधुनिक गीतों का सोनिका मिलिकपी और उनके साथियों के आवाज़ों में। और स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में 7:40 पर आप सुनेंगे कुकी कार्यक्रम, जिसमें आप आज सुन पाएंगे कुछ कुकी आधुनिक गीत गायक कलाकार हिंग नेम खोलहो और उनके साथियों के आवाज़ों में।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के पश्चात आप सुनेंगे 8 बजे किसान वाणी कार्यक्रम। 8:30 का समय रहेगा टीचर्स कार्यक्रम का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा समाचार संध्या, समय रहेगा 8:45 का। 9 बजे आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगे सिद्धार्थ पांडे। तत्पश्चात आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।

दोस्तों, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत माँ राधुनी गीत गायक कलाकार रोजालून थेक और उनके साथियों की आवाज़ों में FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत अभी आप सुनेंगे जेमी लोकगीत गायक कलाकार किहुंग बुइले रियामे और उनके साथियों के आवाज़ों में।

दोस्तों आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत जेमी लोकगीत गायक कलाकार किहुंग बुइले रिया में और उनके साथियों की आवाज़ों में FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे आंचलिक बातोरी।

दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आंचलिक बातोरी। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी आप सुनेंगे डिमासा लोकगीत गायक कलाकार गोपीनाथ हाफलोंगबार और उनके साथियों की आवाजों में।

아이 할라이샤 시바 디에 신앙몽 아이 할라이샤 실라낭 타올라 아낭 아이 조리샤 랄라낭 타올라낭

Айшриня тика по шибуман.

哎嘛，行嘛，好喽，哇，大吉空，嘛行嘛，好了吧，再照看。

爱自己的沙拉，写自排版。시리 샤라셰 파이바 아라움 장라오치 에게시 샤야오지밤

श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत डिमासा लोकगीत गायक कलाकार गोपीनाथ हाफलुंगबार और उनके साथियों की आवाज़ों में FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलुंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुनेंगे कार्बी आधुनिक गीत गायक कलाकार सोनिका मिलिकपी और उनके साथियों की आवाज़ों में।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे कार्बी आधुनिक गीत गायक कलाकार सोनिका मिलिकपी और उनके साथियों की आवाज़ों में। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हावलंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में अभी आप सुनेंगे कुकी आधुनिक गीत गायक कलाकार हिंगने नेम खोलहो और उनके साथियों की आवाज़ों में।

दोस्तों आप सुन रहे थे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत कुकी आधुनिक गीत गायक कलाकार हिंगने नेम खोलहो और उनके साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ ही स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम।

दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी प्रसारित गुवाहाटी प्रोडक्शन द्वारा प्रसारित किसानवाणी कार्यक्रम FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे टीचर्स कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगे अंकिता पॉल, और ये टीचर्स कार्यक्रम का रिपीटेड ब्रॉडकास्ट है।

0: आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम। और आज का हमारा विषय है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन रूरल एरियाज। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रूरल एरियाज में एजुकेशन की प्रेजेंट सिचुएशन, वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स के एक्सपीरियंसेस और उन पहलुओं के बारे में जो हमें इस विषय को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस किमनुन थिंग हिंगना, जो थिंगवम हाई स्कूल माईबंग ब्लॉक के असिस्टेंट टीचर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो जैसे हमारे कार्यक्रम का विषय हमने बता दिया है मैम, उससे जुड़ के मैं पहली चीज तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स को एजुकेशन के दौरान कौन कौन सी कॉमन चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है।
1: रूरल एरियाज में बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उनमें से हम सब बताएंगे तो बहुत सारा समय लगेंगे
0: जी।
1: सो आई विल बी टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट फ्यू पॉइंट्स। उसमें से एक है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, क्योंकि इन रूरल एरियाज एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारा विलेजेस होते हैं। तो उन सारे विलेजेस में से एक विलेज में एक हाई स्कूल होता है, तो वहां पे इन मेनी अदर विलेजेस द स्टूडेंट्स कम टूगेदर टू दैट पर्टिकुलर विलेज टू गेट एजुकेशन। तो उनमें से एक एग्जाम्पल, मैं जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे इन थिंगवम हाई स्कूल डिगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरता है
0: जी।
1: एंड देयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस एंड दे हैव टू कम बाय वॉकिंग बिकॉज देयर आर नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड वी कैन टॉक अबाउट द रोड्स ऑल्सो, दे आर नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस कुछ विलेजेस ऐसा भी है कि दे आर लाइकली विद इन 10-20 किलोमीटर्स, सो चिल्ड्रन हैव टू ट्रेवल बाई फूट अर्ली इन द मॉर्निंग टू रीच स्कूल ऑन टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। एंड अनदर प्रॉब्लम इज द चैलेंजेस विच द स्टूडेंट्स फेस इज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स ऑफ द फैमिली, बिकॉज मोस्टली इन रूरल एरियाज पीपल देयर दे मेनली डिपेंड ऑन फार्मिंग। तो वहाँ पे वेन दे मेनली डिपेंड ऑन फार्मिंग देयर पेरेंट्स मेन फोकस इज ऑन द फार्मिंग एंड मोस्ट पेरेंट्स वी हैव टू मेक देयर माइंड डेवलप्ड दैट एजुकेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉवर्टी का वजह से या इकोनॉमिक हार्डशिप्स का वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होता है कि घर पे उन लोग का भाई बहनों को देखभाल करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट अटेंड स्कूल प्रॉपरली एंड देन फिर दे हैव टू हेल्प देयर पेरेंट्स इन द फील्ड्स एंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फॉर सपोर्ट करने के लिए, इट कैन बी बेटर सपोर्टेड बाय कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स जो एजुकेटर्स होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स लोग के साथ हम लोग मिलते हैं एंड देन फिर हम लोग उन लोगों को समझाते हैं एंड इट कैन बी बेटर सपोर्टेड थ्रू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा एंड देट इज़ वॉट आई थिंक इज़ द कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाई स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज।
0: जी जी मैम, ये आपने बहुत अच्छे से जो चैलेंजेस फेस करते हैं इसको पॉइंट आउट किया है और इसको सपोर्ट करने का रास्ता भी आपने बताया है। तो मैं आपसे दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि स्कूल्स में जो बेसिक स्कूल फैसिलिटीज़ है बच्चों की लर्निंग को कैसे इफ़ेक्ट करती है।
1: स्कूल के जो बेसिक फैसिलिटीज होते हैं वो चिल्ड्रन के लर्निंग को बहुत मदद करते हैं। एजुकेशन इन द सेंस इज नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग द बुक्स, लेकिन वन टॉपिक विल बी सेफ्टी एंड हाइजीन, जो कि ये सेफ्टी एंड हाइजीन का वजह से बच्चे के माइंड्स भी ओपन हो सकते हैं। बिकॉज इफ यू सी दैट इफ यू आर स्टडिंग इन अ वेरी डर्टी एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग्स आर नॉट क्लीन, इट इज स्वैम्प बाय डर्ट, तो बच्चे लोगों का भी अटेंशन नहीं हो पाएगा, दे विल नॉट पे अटेंशन ऑन द क्लास। सो आई फील दैट सेफ बिल्डिंग, सिक्योर फेंसिंग, क्लीन टॉयलेट्स हो एंड वो सब चीज उन लोग का फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग और उन लोग का अटेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। एंड देन क्योंकि स्टूडेंट छोटे बच्चे हैं, उन लोग का माइंड्स फुल ऑफ बहुत सारी चीजें होते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। सो अगर ये एनवायरनमेंट अगर क्लीन नहीं होते हैं तो उन लोग का बिहेवियरल चेंज भी हो सकता है, देन ओवर क्राउडिंग, वो सब का वजह से उन लोग का जो पढ़ाई है वो भी हिंडर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई फील दैट सेफ्टी एंड हाइजीन, द एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन, दैट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल मैम, ये बहुत सच बात कही है आपने। तो मैम, जैसे अभी हमें पता है कि आप एक रूरल एरिया में आप टीचिंग करती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रूरल स्कूल्स में पढ़ाते वक्त टीचर्स को कैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो इस जर्नी से क्या सीखते हैं?
1: The teachers working in rural areas will better understand me in this
0: जी.
1: because इनमें से बहुत सारा चीजें हैं. एक चीज मैं बताना चाहती हूँ
0: जी जी
1: कि strong relationships build होता है, क्योंकि यहाँ पे in rural areas everyone knows everyone. So teachers also visit their homes, they visit their students, their parents and all. तो उसमें एक डीप कम्युनिटी कनेक्शंस होता है. एंड अनदर वन इज रिसोर्सफुलनेस एंड क्रिएटिविटी. बिकॉज इन रूरल एरियाज वी डू नॉट गेट एवरी थिंग, ऑल द फैसिलिटीज विच वी गेट इन टाउन्स, एस्पेशली द विलेज वेयर आई एम स्टेइंग, यू विल फाइंड वन और टू शॉप्स ओनली एंड देयर यू विल नॉट फाइंड एवरी थिंग वट एवर वी गेट हियर. तो टीचर्स जो वहाँ पे काम करते हैं, हम लोग एडेप्ट करना पड़ता है क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेस है, हमें कुछ नहीं मिलता. तो हम लोगों को अपना ओन मटेरियल्स हम लोग इम्प्रोवाइज करना पड़ता है जितना सामान या रिसोर्सेस मिलता है. एंड फिर अनदर वन इज द टीचर्स, दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस. रेजिलियंस हम लोग एडेप्ट करना पड़ता है कि हम लोग ओवरकम करना पड़ता है चैलेंजेस, पोर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. इन फ्यू रूरल एरियाज देयर आर प्लेसेस वेयर देयर आर नो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, तो उसमें टेक्नोलॉजी होना मुश्किल है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो देयर विल बी नो बैटरीज एंड ऑल, तो टीचर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए. तो वहाँ में टीचर्स लोग उसमें भी रेजिलिएंट होना पड़ता है कि यू नो दे ब्रिंग देयर ओन बैटरीज, या नहीं होने से बच्चे लोगों को टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाने के लिए जरिए नहीं होता है. तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जब टाउन में आते हैं, दे ब्रिंग ऑल द मटेरियल्स, इवन इफ दे कैन नॉट शो दोज वीडियोस एंड ऑल, दे प्रिंट आउट ऑल द पिक्चर्स एंड ऑल्सो दैट द स्टूडेंट्स विल बेटर अंडरस्टैंड. तो वही है, हम लोगों को टीचर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज एडेप्ट करना पड़ता है. लेकिन जितना भी हार्डशिप्स हो उनमें से हम लोगों को फुलफिलमेंट मिलता है, फुलफिलमेंट इन सर्विस. लाइक हमें एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि we can see how the students are struggling, how they have to walk from one village to another village, like 10 to 20 kilometers they will walk, they will come to school. So we feel that the students, they really want to learn. You know, we do not get time to think that slack off karne ke liye time nahi hai. Like we need to, the children, if they are doing this much, then we the educators, hum logo ko hamara full potential dena padega.

0: एंड फिर अनदर वन इज़ इम्पैक्टफुल मेंटरशिप, जहाँ एजुकेटर्स हम लोग लर्न करते हैं हमारा रोल कहाँ तक हम लोग एक्सटेंड कर सकेगा, सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को एस्पायर करें इन ऑल राउंड डेवलपमेंट हम लोग उन लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि यू विल फाइंड कि बच्चे इन विलेज एंड टाउन्स आर डिफरेंट. सो जितना हम लोग सकते हैं हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट इन ऑल पॉसिबल वेज, हम लोग सिर्फ बुक्स के जरिए नहीं, जितना भी इन ऑर्डर टू सर्वाइव वो सब भी हम लोग उन लोगों को पढ़ाते हैं.
1: जी मैम, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप लोग अपने जो टीचिंग को अपने एक नॉबल प्रोफेशन की तरह मान के उस पर इतना मन लगा के करते हैं. बहुत अच्छा लगा ये सुन के. तो मैम, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने हमें पहले भी बताया है फैमिलीज को जाके आप लोग इंस्पायर करते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो इसमें फैमिलीज और कम्युनिटी किस तरह बच्चों को अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए एंकरेज कर सकते हैं?
0: दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आई बिलीव अदर टीचर्स वर्किंग इन रूरल एरियाज भी वो लोग समझेंगे. क्योंकि अभी नया सेशन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर ऑल्सो हम लोग टीचर्स लोग पैदल जाते हैं विलेजेस टू विलेजेस, वन विलेजेस टू अनदर. वेन एवर देर इज अ हॉलीडे हम लोग उस दिन we will go to that one particular village, घर घर हम लोग जाते हैं parents लोग के साथ बात करने के लिए कि you know the importance of education, बच्चे को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, वो सब हम लोग जाके encourage करते हैं. then when we find another day, if it is a holiday, then we go to another village जहाँ में हम लोग फिर बच्चे लोग को जाके समझाते हैं, not only the children but the parents also. तो यहाँ में हम लोग जितना जाके एनकरेज करते हैं और उन लोगों को समझाते हैं, वहाँ पे फैमिलीज एंड कम्युनिटीज भी दे प्ले अ वेरी बिग रोल इन स्टूडेंट्स एजुकेशन इन रूरल एरियाज.
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि फैमिलीज अपने माँ बाप बच्चे को अगर नहीं समझाएंगे कि स्कूल जाना है, दैट इट इज इम्पोर्टेंट, देन द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे विल नॉट पे इम्पोर्टेंस. और फिर कम्युनिटीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आई हैव फाउंड कि इन दैट एरिया जहाँ में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे द विलेज कम्युनिटी लीडर्स ऑल्सो वो लोग क्या करते हैं कि व्हेन द एग्जाम इज नियर, मेनी पीपल वो लोग ड्यूटी भी करते हैं कि बच्चे लोगों को पढ़ाई करना है और दे डोंट लेट द स्टूडेंट्स लॉयटर अराउंड. तो ये सब चीजें हैं जो फैमिलीज फिर कम्युनिटीज वो लोग बच्चे लोग को एनकरेज कर सकते हैं टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन.
1: जी मैम, तो आपने बहुत सही बात कही है कि फैमिलीज और कम्युनिटीज को भी एजुकेशन के बारे में एनकरेज होना जरूरी है हमारे बच्चों के लिए. तो आपसे मैं अभी ये जानना चाहूंगी कि आपने हमें पहले बताया है कि उस साइड पे ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है, तो टेक्नोलॉजी हमारे जो रूरल एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है?
0: टेक्नोलॉजी श्योरली विल ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एवरीवेयर, स्पेशली इन रूरल एरियाज. जिस जगह पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी मिल जाए तो वहां पे बच्चे को you know smart classrooms, they can get better understanding by viewing, seeing, by learning. So through videos bhi bacche samajh sakte hain, kyunki kabhi kabhi you know in rural areas in a particular community wahan pe if the teacher doesn't speak the same dialect of that particular community, language barrier aata hai.
1: Ji ji bilkul.
0: To yahan pe technology bacche ko education ke liye help kar sakte hain, kyunki kuch kuch baatein aise hai ki bacche nahi samajh pate. And then if the teacher is using the English language or the Hindi language but doesn't know the mother tongue of those children, then they can use these technologies to make them understand better.
1: जी मैम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि लैंग्वेज बैरियर को भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मिटा सकता है. तो अभी धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं, तो आखिरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूरल एरियाज में एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम सब मिलकर कौन से ऐसे प्रैक्टिकल और पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं?
0: इसमें हम वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, फिर टीचर एम्पावरमेंट ताकि वो लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी मिल सके, और फिर यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. और फिर यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेस, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस होता है, एंड वो सब चीज हम लोग मिलके दूर कर सकते हैं मेरे ख्याल से. एंड देयर आर मेनी अदर जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेस थ्रू गवर्नमेंट भी बहुत सारा अवेलेबल है, जैसे कि मिड डे मील्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब हम लोग सब मिलते हैं. आई फील दैट दिस आर मोस्ट नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट एंगेज, एंड हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस थिंग्स.
1: जी मैम, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज बताई है जो इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे हमारे सोसाइटी में बहुत अच्छा

0: वो मिशन आ सकता है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ हमारे श्रोताओं के लिए पूछना चाहूंगी कि आपके तरफ से आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में और रूरल एरियाज के बारे में, जहां तक आपका ये मैसेज पहुंच सके।
1: Just as B.B. King said, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. So education is important and हम लोग अपने छोटे छोटे एक्स और अपने छोटे छोटे वर्ड्स के जरिए हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और स्टूडेंट्स या पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज को जहाँ पे भी हम हैं, वेदर इन रूरल एरियाज और इन टाउन एरियाज, वी कैन हेल्प ईच अदर इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड टीचर्स। थैंक यू।
0: जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपका आखिर का मैसेज, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत असरदार रहेगा मैं सोचती हूँ। और आपने अपना कीमती समय हमें दिया यहाँ पर स्टूडियो पे आके हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: थैंक यू सो मच।
0: श्रोताओं, तो आज की इस बातचीत से हमें रूरल एजुकेशन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का मौका मिला। जब हम किसी भी स्थिति को समझते हैं, तभी हम उसमें बेहतर सोच और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। रूरल एरियाज में एजुकेशन का सफर अपने आप में एक अलग अनुभव है, जहां चैलेंजेस के साथ साथ पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही मजबूत होती है। अगर हम सब मिलकर अवेयरनेस बढ़ाए, बच्चों को मोटिवेट करें और सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए, तो एक सुंदर बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं अंकिता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय और नए मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। नमस्कार।

दोस्तों आप सुन रहे थे टीचर्स कार्यक्रम का रिपीटेड ब्रॉडकास्ट, जिसे प्रस्तुत किया था अंकिता पॉल ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

0: वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
2: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
2: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुँचाया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
3: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
4: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
5: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
3: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
2: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत करेंगे सिद्धार्थ पांडे।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई चिबाई कुलुम खुबलई कार्डम। आकाशवाणी हफलों की ओर से मैं सिद्धार्थ पांडे लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो हफलों। एक हफ्ते के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए चलिए इस हफ्ते के सफर को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हफलोंग,
1: नमस्कार। मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: बताइए आज की रिक्वेस्ट आपकी क्या है?
1: फिल्म का नाम है बरसात की एक रात, अमिताभ बच्चन और राखी जी का फिल्म का गाना है। और गाना है सर मन चली कौन सी ये गली, गायक किशोर कुमार आशा भोसले सर।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग
1: हेलो।
0: जी।
1: वहाँ कर्बिंग से बोल रहे हैं। मेरा नाम राफेल।
0: जी बताइए।
1: हमको एक गाना सुनना है।
0: बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दिल है तुम्हारा।
0: दिल है तुम्हारा मूवी से जी। क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताएंगे?
1: गाड़ी चलाता है।
0: जी, और पहली बार आपने कॉल लगाया है? चलिए, आप अपनी पसंदीदा गाने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो हफलोंग, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मेरा नाम तो स्टेशन पहले से बात करता हूँ। मेरा नाम इसको
0: प्रणति जी, कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: आज जुबिन गार्ग स्टिंग फिल्म का गाना सुनिए। हाँ,
0: जुबिन गर्ग की आवाज में।
1: फिल्म का नाम है स्टिंग। धीनी धीनी तेरी बोले बुद्धू, रामा रामा रामा, इसका गाना है।
0: ओके ओके, प्रणति दत्ता सुनना चाह रही हैं जुबिन गर्ग का गाया हुआ ये खूबसूरत सा गाना। उनके लिए ये गाना हम प्ले कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग
1: हेलो सर,
0: जी।
1: मैं माहौर से बोल रहा है। मेरा नाम है रायजोन बठारी।
0: ऐसे ही आप
1: कॉल करा था लेकिन बहुत दिनों से नहीं मिला, कॉल नहीं लगा है।
0: जी, इसलिए हम हमारे जो दूसरे कॉलर्स थे ना उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो अन्य कॉलर्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, इसलिए उनको जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो रिक्वेस्ट हमारे दूसरे कॉलर्स ने मानी, इसलिए आप हमारे जो नए कॉलर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है। बताइए क्या कर रहे हैं आप?
1: आजकल जूम दान खप रहा है। जी
0: ओके, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का जो गाना सुना दीजिए।
0: ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ, धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: मैं मोनादास बोल रहा हूँ, नागालैंड से बोल रहा हूँ।
0: मोनादास जी, आपका हमेशा एड्रेस चेंज होता रहता है, ऐसा क्यों?
1: जी सर, हम लोग कहाँ कहाँ चलते रहते, घूमते रहते, कभी मिजोरम कभी नागालैंड, काम के सिलसिले में एक ही जगह में रुकते नहीं है सर। हम लोग
0: आप बताना चाहेंगे किस तरीके का काम आप करते हैं?
1: अभी फिलहाल केसर मिशन फिटिंग कर रहे हैं यहाँ से।
0: ओके, उसी सिलसिले में आपका मतलब एड्रेस चेंज होता रहता है ना?
1: हाँ, कभी
0: ले
1: परमानेंट
0: ले
1: काम मिलता है तो बैठ जाते हैं, काम करते रहते हैं परमानेंट होने से।
0: जी। और

0: आप
1: से जाना पड़ता है हमको।
0: इतना घूमते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपका कॉल करने का एड्रेस आकाशवाणी हाफलोंग ही बना हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी शुक्रिया सर।
0: जी। क्या सुनवाए
1: एक
0: आपको
1: गाना सुना
0: आज?
1: दीजिएगा,
0: जी
1: कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, तो कोई गाना सुना दीजिएगा।

0: हेलो हफलोंग
1: हेलो।
0: जी,
1: हाँ भैया नमस्ते
0: नमस्ते। किनसे बात हो रही है?
1: जी। भैया योगेश जांगड़े देने पर छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, 3 हफ्ता हो गया ना?
1: पिछले हफ्ते आप बोले थे भैया।

0: हफ्ते लगाना करके।
1: ओके बताइए, आप का अपना कुछ नया खबर, नई बात, ऐसा कुछ आप शेयर
0: मैं
1: करना
0: तो
1: चाहेंगे?
0: यही है, काम धाम है अपना और बाकी सब ठीक है।
1: जी, गाना कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म प्रेम गीत से एक गजल सुनवा देंगे, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।
1: इसी गाने को आपके
0: जी
1: लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, आप गाने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग
1: मैं टीजी देशमुख बोल रहा हूँ, उनचेगा बुजुर्ग, नांदेड़ महाराष्ट्र से। बहुत
0: जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, मेरा आज पहली बार कॉल लगा अपने हफलोंग के लिए, रेडियो के लिए।
0: बहुत खुशी की बात है और आपका विशेष स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में।
1: और मुझे अभी जानकारी मिली हमारे ग्रुप में अपने रेडियो के मार्फत की, इसकी वजह से मैंने कॉल किया आपको।
0: जी धन्यवाद। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या करते हैं आप?
1: किसानी करता सर, 12वीं तक मेरी पढ़ाई हो गई और बाद में मैंने खेती चुनी और खेत में काम करता हूँ मैं।
0: जी, और रेडियो कब से सुन रहे हैं? कितना वर्ष हो गया है?
1: 25 साल से रेडियो सुनता हूँ।
0: आप तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
1: हाँ, मैं बहुत दिन से, 25 साल हो गए, 25-27 साल हो गए मैं रेडियो सुनता हूँ, बचपन से रेडियो सुनता हूँ।
0: जी, आज कौन सा गाना आपको सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है वारदात और गीत के बोले संदेश आते हैं।
0: जी, अपनी पसंदीदा गाने का आनंद लीजिए। आपने पहली बार आकाशवाणी हाफलॉन्ग में कॉल लगाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके अन्य जो नए मित्र हैं उनसे भी हम जुड़ना चाहेंगे जरूर।
1: ओके सर, मैं बताऊंगा अपने बारे में, आकाशवाणी के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों को।
0: शुक्रिया।

दोस्तों इन्हीं कॉल्स और गानों के साथ ही हेलो हाफलोंग का आज का सफर अब हो चुका है पूरा। इस हफ्ते के बाकी के कॉल्स और गानों के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे और जारी रहेगा सफर मनोरंजन का हेलो हाफलोंग के साथ। श्रोताओं, जाने से पहले आपको बता दें, हेलो हाफलोंग की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। और प्रोग्राम आपके लिए पेश होता है हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे। अब आप नोट कीजिए, हमारा नंबर हमें कॉल करने के लिए नंबर है 9435700596। जिन श्रोताओं के कॉल आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं, उन सभी श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले 3 हफ्ते के बाद ही आप इस कार्यक्रम में कॉल लगाएं, ताकि हमारे बाकी जो कॉलर्स हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले। कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब अपने दोस्त सिद्धार्थ को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबले कार्डम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग, जिसे प्रस्तुत किया था सिद्धार्थ पांडे ने। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: भी तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आपकी गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

दोस्तों अभी आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित चित्रगीत कार्यक्रम, और आज का पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म सिलसिला से। गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद लीजिए इस खूबसूरत गीत का।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म ओमकारा से राहत फतेह अली खान के आवाज़ में ये गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी है। समय हो चला है आप सभी से आज के लिए विदा लेने का। कल की पहली सभा में यानी कि 6 बजे आप सभी से एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अर्पिता आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। शुभ रात्रि, जय हिंद।